0: हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो चेक हेलो
0: हेलो
1: हेलो चेक हेलो
0: हेलो हेलो
1: हेलो चेक हेलो चेक हेलो हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो हेलो हेलो
0: वाह
1: चेक

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे, समझे
0: समझे।